प्रणाप्रभ संग सुहांति संगे सुहांति कंत सुधामी धनसरैणी गावी सास ग्रास सास सास चतार जीवा प्रभ पेख हर गुण गावी है बिरहल जाया दर्स पाया म्यो दृष्ट संचंती बिनवंत नानक मेरी अच पुन्नी मिले जिस खो जंती नसवंजों गलिबो खो करता कर आया दूतै दहन भया गोविंद प्रगटाया प्रगटि गोपाल गोविंद लालन साध संग बखाणिया आचार्य डीठा म्यो बूठा गुरप्रसादि जाणिया मन शांत आई बजी वधाई नह अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना डीठड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत पय पलायण धर्म धीरज सहज सुखी साध संगत हर भजी कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गय कंठ लाई गुरमिलाए गोविंद जपत गायण बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायण निध सिद्ध चरण गही ताकि हार काड़ा सब किसे वस जिसे सो प्रभु साड़ा गै पुजाली ने नाम दीने कर तार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अमे हर रस जाखिया साध संगे नाम रंगे रण गीत वडाया खाड़ा बिनवंत नानक शरण स्वामी बाहुड़ जन्म जम ना उपाड़ा आस्था महला पंजवा दिन रात कमाए कमाए डऊ सो आयो माथ जिस पास लुकाए दड़ऊ सो वेखी आस्था थे संग देखै करण हारा काए पाप कमाई है सो करत कीजै नाम लीजै नरक मूल न जाइए आठ पहर हर नाम सिमरो चलै तेरा साथी पाज साध संग सदा संगत सदा नानको मिटहै दुख कमाती बलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किस दे रहे हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूह समूह तारी है सिद्ध साधक देव मुन जान भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजी है प्रभ एक करण हारा खोट न कीचई प्रभ परखण हारा कूड़ कपट कुमा मंदड़ी जन महे संसारा ज संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक ते आया ताज काम क्रोध आनंद निंदा प्रभ शरण आई आया जल थल मही अल रव्या स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेख हर चंदा उरड़ी अस्थिर किश नाही माया रंग दिजेते से संग न जाई हर संग साथी सदा तेरा दिन सरैन संभाली है हर एक बैन कह कछ अबर नाही पाऊ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस परब एक कार मन माही बिनवंत नानक वड भाग पाई है सुख सहज समाही आसा महला पंजवा शांत कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध आकार जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूस्त मन चोर हे दिन करु अन दिन खात दिन खात जात विहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणापति जन्म मरण अनेक बीते प्रसंग बिन कछ ना गति कुल रूप धूप गया नहीं तुझ बिना मोहे कवन मात कर जोड़ नानक शरण आयो प्रनाथ नरहर करौंगात मीना जल हीन मीना जल ही नहे ओहो बिसरत मन तन की नहे कत जीवन प्रै बिन हे हो सनमुख साहबान सनमुख साहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओहो बेद्यो सहज सरोत प्रै प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका न लागे प्रेम पा प्रै प्रेम पागे चितवंत अन दिन सब मना सरी रंग राति नाम माते पै दुती पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरण हर प्रेम नानक मगन होत अली अल गुंजात अली अल गुंजात ही मकरंद वरा सुबासन मात ही प्रीत कलमल बंधावत आप प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित ब्यास चातरक चित ब्यास ही कन बूंद चाबे चितर मन आस ही अल पीवत बिन सतपताप तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतर सुजान स्वामी कवन रसना गुण पणा
ਗੈ ਪੂਜਾ ਲੇ ਬਹੁ ਨਾਮ ਦੇ ਬਹੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਾਰਤ ਮਿਟਤ ਪਾਪੂ ਨਾਨਕ ਜੰਪੈ ਪਤਤ ਪਾਵਨੂ ਹਰ ਦਰਸ ਉਪੇਸ।

माया मनो न विसरे मांगे दम्मा दम्मा जो प्रभ चित न आवई नानक नहीं करम पिक्चर मूल ना छुड़ी दो पिक्चर मूल न छुड़ी दो पिक्चर आप कृपा शब्द अखुट बाबा नानका खाए।

तारण हार। हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एक पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जान जुग मैं सुख वासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तन तूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तन का पौ सब गवासी।

जति सदी नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तन की शरणा, जन तो नाही विसरया। आस्था महला पंजवा, भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता न कामो, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग पव जल तरन कै, जन्म मृथा जात रंग माया कै राव। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो ब्रत पारा। हमरे दोष्ट सब तुम कावहु, आप हाथ दय मोहे बचावहु।

आज सिंगारे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की राय प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सुतम ते पाऊं सेवक सेख हमारे तारिय है चण चण सतर हमारे मारिय है आप हाथ द मुझे उभरे आए मरण काल का त्रास निवारे आए हु जो सदा हमारे पछा सरी अस्तु करे और अच्छा राख ले हम राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बबतरा काल पाई सब जीव अवतरा काल पाई कर विष्णु पर काशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुबारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कौन चरिया सुधूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के बट बट की जान जब उध करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा तंदरालम जानत भेद भेद हरियालम निरंकार निर्बकार निरलंब आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको पेव न पावत भेदा ताको कार्य पान अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत

बहन बहन तो ती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई पूपा आंडज जेरज सिद्ध जकिने उत्पुज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा हब बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग्रो दोष जिते उठवत पाता सगल मलेश करो ऋण काता जे अस्त हो जय तब शरणी परे दिन के दोष्ट दुगत वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल उनकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रष्ट डरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा काल फास दे ताहि उबारा जैन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दोख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दले उबारी सर्वठौर मोह सहाई दोष्ट दोख ते ले बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ

दे रहे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसया, जन इच्छा सब भजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो, जिस दियां ए बड़िया, कह नानक सुनो संतो, शब्द रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जन कौ, से नाम हर कह लागे, कह नानक तैं सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी, संत साजन पय सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवत, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचाए, तिसका होए उधारो, एह वास्तव तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो, तम संसार चरण लग तरियाए, सब नानक ब्रह्म प्रसारो। सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कीता, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया

दर्शन परसयां गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे शिव सुख समी नूर अरसों कुरसों छटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बेसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कब नहीं हां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बद बुझाए ताकि निर्मल रीत कोई जाने कब नहीं हां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बद बुझाए ताकि निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सत बंधप इष्ट मीत अर पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतह को ना सहाई मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हाँ हाँ करत बिहानी अवद है ता मैं संतोख न पाया हास्त राथ आसब पवन तेज धनी पूमन चतरंगा संग न चालो इन मैं कछुए उठ सदायो नंगा हर के संत प्र प्रीतम प्रभ के ताक हर हर गाइय नानक इहां सुख आगै मुख उजल संग संतन कह पाई हर के संत प्र प्रीतम प्रभ के ताक हर हर गाइय नानक इहां सुख आगै मुख उजल संग संतन कै पाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ जाप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पहू गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच।

निरोक्त स्वरूपा द्रमोक्त भूत हैं प्रभुक्त प्रवाह हैं सुजोक्त सुधा हैं सदैव स्वरूपा वेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त तुल सलाम हैं सदैव काम हैं निर्बाध स्वरूप है गाद अनूप हैं अंगाद रूप है नाद स्वरूप हैं अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्ग त्रिपादे गंजे गादे सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वा नरागे त्रिपुक्त स्वरूप है स जय सूत है किनर्क प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरोक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनोक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है पेखा लेख है परम कर्म नाद गाद अजय है पय पूता दूत है अना सब दास तंद बंद है अभगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है नजंता सुनंता लेखा देखा लेखा पेखा टाह गाय संभ कम नीला नाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चरपट छंद तब प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद तव प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमात्म प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताते न माते न जाते न पाते नरसाकंग सरीका मितमेक है सदैव प्रवाह जय अजाय भगवती छंद तव प्रसाद के जारजूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समासल कलाम है के साहब दिमाग है के उसलो चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहन दें के राज ग्रहण दें करीमल कमाल है के उसलो जमाल है के नीमल कराज है करीमल निवाज है हरीफुल श्रीकान है हरासल बगान है कलंकंग प्रणास है समासल निवास है अकंजल कनीम है रजाय करीम है समासल जवा है के साहब ग्राह है के नरकंग प्रणास है बैसल निवास है के सर्वलगवान है मे सुलगवान है तमामल तमीज है समाज तला जीज है परम परमीश है समाज तला रीस है देसल लेख है मेसल बेख है जमीन उल जमा है अमी कुल मा है क्रीमल कमाल है गजरोज जमाल है गजलंग प्रकाश है कमित सुभाष है गजम स्वरूप है कमित भूत है के मित्तो बसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग नंग है कमित भंग है मद पार छंद तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गर्म दाम हर भर गंज हर नर पर भांज गन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर नर अमंड अनपवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जे अंग आसन अपंग उपमा पार गिद उदार जल थल अमंड दिस विश्व अपंड जल थल महंत दिस विश्व अंत अनपवनाश त्रित तर त्रास आजन वाह कैसदाव

रंज बात अनठट भंडार अनठट अपार अडीठ धर्म आत टीठ कर्म हर अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद दव प्रसाद करुणालया है अरकालया है खल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है द्रत के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्व कर है सर्वपास है सर्वनाश है करुणा कर है जप जप है तप तप है कृता कृत है मृत मृत है करुणाकृत है कृता कृत धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत मृत मृत है अजबा कृता मृत मृत है नार नायक है खल कायक है विश्वंपर है करुणा लय है नृप नायक है सर्वपायक है बहुपंजन है अरगंजन है रिपदापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरदा हर है परमात्मा सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जास है भुजंग प्रयात छंद नम सूर्य सूर्य नम चंद्र चंद्रे नमो राजका नमो राज राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पौज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नाद अंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भांग भांगे भंगी रूपे अनंगीय नामे दृभंगी दृकाले अनंगीय कामे एक अश्री छंद अजय लय पया भय भू अजू नाश गास गंज पंज लख भग गल अल लेख भेख नाम काम गाढ़ा नाथ प्रमाथ जोनी मुनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे गर्मंग बर्मंग गंजे लेखे भजंग भुजंग प्रयात छंद नम सुर सूज नमासल प्रणामे समासल प्रणासे गंजल नामे समासल निवासी अजायब भूते अजायब नीमे हरि अंकरि अंकरि मोरहिमे चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भूते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतर चक्र वर्ती

आप अपनी बुद्ध है जेती मरनत पैन पैन तो तेती तुमरा लखन जाय पसारा कहे विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनुस रूपा रंग पयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सिद्धिनी अद्भुज खान महोर रजनी कहूं भूत राजा हवा बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम्पव आदि जुगाद स्वरूप सुजम्पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग्रह दोषिये उठ बदत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब शरणी परे तनके दोष्ट दुख्त हव मरे पुरुष जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल उनकट नहीं आए हैं रक्षा होई ताए सब काला दोष्ट टरत काला कृपा दृष्टो तन जाय हरे हो दागे दावदन कमो हरे हो रद सिद्ध कर्म सो होई दोष शास गन कोई एक बार जन तुम सुबार काल फौज दे ताहि उबारा जैन नर नाम तिहारु का दारिद दोष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दल उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट लोग ते लिख बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दल उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दोष्ट दोगते ने बचाई सतनाम श्री वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बनियाइया शब्द तंगा वो हरि के रामन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही करते रहे करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही करते रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु भेट हो जिस दियां ही बड़ियाइया कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तो दियन का से नाम हर कह लागे कहे नानक तह सुख हुआ चित कर अन हदवा जी साची लिवै बिन देहन माणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुदवाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस न होर साओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा करे वे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचा सवारिया कहे नानक आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सुन पावे पावे तुजन दे जिसन और कह करे विचारिया एक परम भूले प्रदा सिख नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन पै निर्मल जना पाना पावे कहे नानक दे प्यारे सोई जन पावे

लिव लागे जाग त्रैण व्याणी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है बुढ़दाता जी अगर मैं आहार पहुंचावे। पोसनो केहे पो न सके जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक बुढ़दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्नि उदर में है तैसी बाहर माया, माया गन सबे को जी करते खेल रचाया। जहां तिस पाणा त जमया परवार भला पाया, लेव छुड़की लगी दृष्णा माया अमर बरताया। यही माया जितर विसरै मोह भजै पाओ दूजा लाया। कहना नंगुर प्रसादी जना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हार आप मुल कहे मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक बिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै जिसन सिर सौंपी है विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बस मन आए। हर आप मुलक है भगत ना के नानका जन हर पल पाए। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर दे रास जानी। हर हर नत जप्यो जियो लाह खट्यो दिहाड़ी। एह तन तिना मिलया जन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हो वणजारा। ए रसना तू आ निरस राज रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए उर्त कितै जे चर हर रस पल न पाए। हर रस पाए पलै पिए हर रस बौड़ न तृष्णा लाग आए। ए हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जस आए। कहे नानक होर आनरस सा विसरे जार वस मन आए। ए श्री राम मेरिया हर तुम मैं जोत रखी दा तू जग मह आया। हर जोत रखी दुध बिच दा तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जन जियो पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया दा जलत हुआ जलत नजरी आया। कहे नानक सरेठ का मूल रचया जोत रखी दा तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभाग में सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना ब्या पे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पर जा पे। आन हत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोग। कहे नानक प्रभाग मिलया करण कारण जोग। ए श्री राम मेरिया इस जग में आए कहे क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया। कह नानक ए शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों जतलाया। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिने वरना देखो कोई। हर बिने वरना देखो कोई नदरी हर ने हालया। हे वे संसार तुम देखदे हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी पुजया जा भिखारी कहे हर बिन वरन कोई। कहे नानक ने तरंद से सतगुर मिलया दे बदरै टोई। ए श्रवणो मेरे हो साचा सुन देनो बठाए, साचा सुन देनो बठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी। जत सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी। साचा लख बढ़ाणी दा की गद गई न जा।

दयामया ठाकुर की सेही संत सुपाई तिन कै संग नानक निस्तरिय जिन रस रस

पहला पहला उत्पाद राजवाद उत्पाद उत्पाद भेद उत्पाद उत्पाद उत्पाद लागे प्रे चलते उत्पाद उत्पाद उत्पाद विडाणी उत्पाद करती उत्पाद।

0: नारद से क्याने होली खाए क्या जमकाल महला पहला वायन के लिए दूर पैर हलान करे सिर उदू बाबा साधे पाए दी कर नदी करता
1: निर्भव निरंकार सतनाम जप किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ।

जगम कैसे सगुना शोक करे संसार तोरा जरा से पुजारा खराब आवे सार कुंडा कायतने सौरा बिगाई सार जल थल पियो पुरल वाया काराया कार हो जा के तो हो जाले तेरा बिगाई सार नान पत्ता

मन रहे गुरबिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार ता ओवी साधन माइए।

जिन दान हर नाम मुख दिया। जिन दान हर नाम मुख दिया, जिन दान हर नाम मुख दिया, सब हाथों

अंदर पाइए तगन तुटू तगना इंद्री तगन नारी पलके तुप पवे नित दाड़ी तगन पैरी तगन अखी तगन जीवा तगन अखी रे तगाया पेव तेव

चौके ऊपर किसे न जान। देख चौका कढ़ी कार ऊपर बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए आने साडा पिटे तन पिटे बिड़ करे मन झूठे चुनी परेन। कौ नानक सच तिहाई है सुच होवे तां सच पाइए पौड़ी चित अंदर सब को। एक नजरी एक चलाइंदा आप देवने आई।

पहला पहला जेकर सुख मन सब सुख होए मोहे ते लकड़ी ते पीला होए जेते दाणे अनके पिया बाज न पाए ऐसा पानी की है दुनिया चल पाए सत्व करण के सुख सवर सो दान के नाम रहे जान तारे धोए भला कैसा।

कि नहीं चाकरी जितबो खसम ना जाए। नानक सेवक पांडिया जिसे ती खसम समय पड़ी नानक अपनी हर सांपे पारवार अपना।

पौड़ी वढ़ो वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक करतबा जिया अंदर जीव शक्ति जान ला सब तेरे बस तेरा पर मला तेरा घर आनंद बधाई तुझ पर मन महत्ता तेज अपना आप जर सर्व

तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक रजावन करतबा, जिया अंदर जियो तू सब जान ला, सब तेरा बस तेरा कर पला।

मन मूर्ख का करें पुकार। फिर आप सतगुरु कहने ने मुश्किल हल कर देने, जे तू नहीं मंगनो रह सकदा ते जो

सुन मीता। फिर गुरु साहिब कह रहे हे सिख मित्र सुन, मिलना रब न सुन मीता, जियो पिंड सब तन अर्पीजे। ये सारिया चीजा उसने दिखा ने, उ देने वाला है, पर इनू अर्पण कर, इना दी पकड़, इना दी होमे छड़। मैं एक दिन पढ़ रहा सी, भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने लिखिया, जिमें आम पुस्तक लिखिया जांदियां ने ना, ते लखारी फिर किसी ना किसी नू समर्पित करता है। कोई आंदा मैं शहीदां नू समर्पित किया, कोई आंदा अपने माता पिता नू, कोई किसी नू समर्पित करता। पर भाई साहब कहंदे ने अपनी शह कोई अर्पी है ता समर्पण होए, अगे ही जो आप दी किंजो समर्पण होए। जिहड़ी है ही तुहाडी, पर फिर नाल ही कहंदे ने जिस तरह एक राजे ने अपने सैर करने वास्ते बाग लवाया, बगीचा लवाया, उस बगीचे का एक माली रखे है, माली नू तनखा दिंदा है मालक, माली उस बगीचे नू सवारदा शिंगारदा, उहदे सोहणे सोहणे बूटे फुल्लां वाले लाउंदा है। कदे कदाई मालक समा कढ के सैर करन लई आउंदा है। उह माली जो उहदा नौकर है, उहदे बगीचे विचों सोहणे सोहणे फुल्लां दा इक गुलदस्ता तैयार करके उस मालक नू भेंट करदा। मालक नू पता है ये फुल मेरे बगीचे दे हन, ये माली मेरा नौकर है, पर उहदी जिहड़ी अर्पण की अदा है ना, वह फुलां दा गुलदस्ता अर्पण की अदा, उहदे ते खुश होके फिर उहनू इनाम दिंदा। बस इन्नी गल है, है ते सब कुछ उसका दिता होया, पर इस नू अर्पण की अदा बनाइए। ते ओ महाराज दस रहे ने सुन मीता, जियो पिंड सब तन अर्पीजे। सुन मीता, जियो पिंड सब तन अर्पीजे। मैनू पता तुहाडी मुश्किल दा, तुसीं मीता जियो बना दिंदे हो। नहीं, सुन मीता, जियो पिंड सब तन अर्पी, गल बन जाएगी जदों इस तरह समझ के पढ़ांगे, गल बन जाएगी। पर असीं जियो नू नाल मीता दे जोड़ दें। नहीं, सुन मीता, जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाईऐ, इउं दर्शन हर जियो पाईऐ। बस जदों ये गुरु की गल मन ली, जदों गुरु के दसे तरीके से तुर पे, मैं भी तुरा, तुसी भी तुरो, क्योंकि सारे असी गुरु के सिख। गुरु रामदास जी ता ही कहते हैं प्यारे हो, उदास ना होवो, बल्कि अपनी पीढ़ी हेठ सोटा फेरो, किथे कमी है। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई पल मानो, जो गुर कह सोई पल मानो। हर

भयो अनुग्रह प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा, पर कदे भुल के नहीं कहना ये मेरे यतन नाल। जे मैं आम तौर से गलती कर पे, मैं सवेरे उठा, मैं नितनेम कीता, मैं आ कीता, मैं वो कीता, नहीं नहीं नहीं। जन नानक को गुर कृपा धारी, जन नानक को गुर कृपा धारी, जन जन नानक को। इथे गुरदे रारे नू सहारी है। नानक दास जी फरमांदे ने मेरे ते गुरु ने कृपा कीती है, और हुण कृपा किस रूप च हो गई, सब अकुल निरंजन दीता, सब अकुल निरंजन दीता, सब हुण मैनू कुल रहत परमात्मा, माया दी कालक तो रहत परमात्मा सारिया विच नजर आउण लग पिया है। पुछो गुरु अर्जन देव पातशाह कहने, जब बिसर गई सब तात पर आई, बिसर गई सब तात पर आई, जब

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: तैनु भारे तो बखाने हो जादा धरती दाते छाई खजामे इको अरदास आसरा मेरा दीवाने हाजर हो समझन गुरु जांदे विच घाटे नहीं मर्दा दी मंजल राजा टुटदी अदवाटे नहीं मर्दा दी मंजल बादशाह
1: वेख के मुड़ जे।

कोई बात ममोलीनी आशिक जो अंदर हक दे दें दे पैसोलीनी बचना दे बड़ी दौड़ दे छड़ के ते चुलीनी बहुता कुछ सोचिया रण वजदे फारा तेनी मरदा दी मंगल राजा टुटदी अदवा तेनी मरदा दी

0: सोटले पैरे कुंडी तार जाकी भी हल्ला रोक जे
1: जाकी भी हल्ला रोक जे जो अड़िया की तापार बाबे फूला सिंह दी तेग ने
0: ओ बाबे फूला सिंह दी तेग ने तोड़ कहीं अरे हंकार ओ सिल

मन सोया मन सोया माया बिस्मार मन सोया माया बिस्मार इस ग्रह में कोई जागत रहे इस ग्रह में एक घर की गल की थी इस ग्रह में कोई जागत रहे कोई जागता होया नजर आंदा भाई ना महाराज जागदा कोई नहीं सारे सौं गए जे साडिया अखां संसार नू तक तक के नहीं अजे तक थकिया जे कन निंदा सुन सुन के अजे तक नहीं थके जे रचना साडी जुबान स्वाद खा खा के अजे तक नहीं रजी ता गरीबन वाली कहंदे सुते ही

जिन्हू पढ़िया ओही अखां विच, जिन्हू सुनिया ओही अखां विच, जिहदी आराधना कीती ओही कन्नां विच, जिहदी आराधना कीती ओही विचारां विच, मन विच जिहदी आराधना कीती ओही सुपने दे विच, अख खोली ते जागत रूप दे विच वी ओही नजर आया।